इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं planetaudio.org.nz/saivachanamrit. ये कार्यक्रम एक सप्ताह तक ऑनलाइन अवेलेबल है.